श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

ब्रज यात्रा को विश्राम देते हुए श्री वृंदावनेश्वरी, श्री राशेश्वरी, श्री हरिदासेश्वरी राधारानी के चरणों का ध्यान करते हुए मस्ती में झूमते हुए उनके नाम का कीर्तन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सने बिहारी लाल की।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: तुम भी गाओ ना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे आ।

बोली जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बज जाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधा राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का स्टार थीम चॉइस। और आज के थीम शब्द है जिसे आदरणीय जाकिर मुरानी जी ने दिया है, वो शब्द है आशिक, बेवफा, महफिल और परदेसी, बेखुदी, नशा, बहार और खुशी, जुदाई और तन्हाई। इन्हीं शब्दों से गाने भेजने हैं और बहुत से दोस्तों ने एक से बढ़ के एक इन प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश की है। सभी का थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने को एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और आज सबसे पहले जुड़ने वाले हैं अशोक देशमुख जी। क्या बात है, बहुत दिनों बाद आज पहले इनका मैसेज आया हुआ है मेरे पास। बहुत बहुत वेलकम है। नाहिद जी जुड़ चुके हैं और हमारे सरफराज जी सरबू भाई जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम असलाम। एंड उनके बाद से यहाँ पे संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं। लिखती है कि ढलती हुई शाम या संध्या जैसी हसीन हो तुम। लिखती है कि ये ढलती हुई शाम या संध्या जैसी हसीन हो तुम और मुझसे दूर होकर भी मेरे दिल के करीब हो तुम। गुड इवनिंग भैया एंड सभी दोस्तों को। मैं संध्या पटेल भोपाल से, आपकी शायरी में भी संध्या छुपी है। थैंक यू सो मच संध्या जी इतना प्यारा शायरी करने के लिए। और हाँ, आज का जो थीम पर ही गाने भेजने होंगे, विदाउट थीम तो गाने शामिल नहीं हो पाएंगे। और फूल भक्त संजू भाव जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी फूल भक्त संजू भाव जी। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अभिषेक तिवारी जी आपका भी। और साथ ही साथ बी के पंत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बी के पंत जी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुकी हैं सरायकला झारखंड से, बहुत बहुत आपका भी वेलकम है। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आगरा वाले। और राधा कृष्ण गोप जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी राधा कृष्ण गोप जी। और सरवजीत सेठी जी क्या कहते हैं, सुन ही लेते हैं इनके भी।
1: अमर सर जी
0: जी
1: नमस्ते, मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: वेलकम,
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना रहे।
0: धन्यवाद आपका सरवजीत सेठी जी। और अंचल कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रेम सिंह साहू जी क्या कहते हैं?
2: गुड इवनिंग आरजे अमन सर।
0: गुड इवनिंग,
2: कैसे हैं सर?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा हूँ सर। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, ऑल फ्रेंड रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे अमन सर के साथ।
0: धन्यवाद।
2: ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही सुंदर और आज की थीम तो बहुत ही अच्छी है सर, आज का तो धमाल होने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं प्रेम सिंह साहू जी साबर टाउन से जुड़ चुका हूँ। ठीक है,
0: धन्यवाद आपका भी भाई प्रेम सिंह साहू जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी,
3: आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, बहुत टॉप ग्रेड का गाना, थैंक यू, धन्यवाद।
0: ओके जी, और उनके बाद है क्या नाम है इनका, मीना इब्राहिम जी ये जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम है मीना जी। बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि जाकिर मुलानी जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे थीम देने के लिए। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम है, नमस्ते सभी दोस्तों के कह रहे हैं। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ओपनिंग सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है। साथ ही साथ जाकिर खान क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
4: हेलो अमन सर, मैं जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुका हूँ और आज की थीम बहुत ही बेहतरीन और इन पर सॉन्ग एक से बढ़कर एक प्ले होने वाले हैं
0: जी। बिल्कुल,
4: थैंक यू जी,
0: वेलकम जी। और सबसे पहले आज का जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, और हाँ आरजे वंशिका जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो कुंता बेनी जी का आप आए बहार आई का टाइटल गाना जी। बिल्कुल, आप आए बहार आए, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल बिल्कुल, आप आए बाहर आई और बहुत सारे फीडबैक भी आई साथ ही साथ। और नाहिद जी लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि हैप्पी हैप्पी बर्थडे आदित्य सोलंकर जी। अच्छा, आज आदित्य सोलंकर जी का बर्थडे है, उनको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी दोस्त इन विशेष देना चाहते हैं तो रेडियो हॉटस्टार के वो खूबसूरत जो फीचर्स है जिसका नाम है शट आउट, आप वहां से उनको यानी कि अपनी बधाइयां दे सकते हैं। जाकिर खान जी ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, लिखते हैं कि इन कुंता बेनी जी के पसंद का शानदार चॉइस, ओल्ड इज गोल्ड, मजा आ गया, थैंक यू कुंता बेनी जी। नाहिद जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश है कुंता बेनी जी, थैंक यू सो मच, इस गाने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपको। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि कुंता बेनी जी की पसंद, आप आए आप बाहर आई, सच में अच्छी फरमाइश लगी है। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं कि कुंता बेनी जी की पसंद लाजवाब बेहतरीन, और सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि कुंता बेनी जी की पसंद बहुत ही शानदार लगा है, शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं उनको भी। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि यानी कुंता बेनी जी की पसंद बहुत ही सुपर डुपर हिट लगी है। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि वर्ल्ड इज गोल्ड सुनने को मिला, बहुत मजा आया। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, और लिखते हैं कि सच में अमन सर जी आप आए बाहर आई, लाजवाब गाना सुनने को मिला है। रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम है रंजीत जी आपका भी। और कुंता जी लिखते हैं कि अमन सर जी गुड इवनिंग, ओपनिंग सॉन्ग तो बहुत अच्छा आपका था ही, साथ ही साथ बहुत ही शानदार लगा था, और थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना सबसे पहले प्ले कर दिया, गाना आपने भेजा ही ऐसा था कि आप आए बाहर आई तो मुझे प्ले करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। वही तो मैं सभी से कहता हूँ कि ये नहीं कि आपने कब गाना भेजा है, गाना अभी भेजिए चाहे यानी पहले भेजिए, गाना जो जहाँ फिट बैठता है मैं वहीं प्ले करता हूँ। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी को प्यार भर नमस्कार है, शुभ संध्या है सभी साथियों को, मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है। नाजिम जी लिखते हैं गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है आपका भी। और मीना जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत गाना है, धन्यवाद देते हैं। और अंगद मिसाल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम है अंगद मिसाल जी। एंड हुकुमचंद जी लिखते हैं कि नहीं वो आज आपके थीम में शामिल नहीं था, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया है, आप दूसरा गाना भेज सकते हैं। जो मैं एक बार फिर से थीम बता देता हूँ, और एक बार फिर से थीम बताता हूँ, आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें और उसी पर गाने भेजने हैं। सबसे पहले है आशिक, ओके आशिक, उसके बाद बेवफा, उसके बाद महफिल, उसके बाद है नाम है इनकी परदेसी, परदेसी ओके, उसके बाद है बेखुदी और नशा, उसके बाद बहार, उसके बाद खुशी और जुदाई और तन्हाई, इन शब्दों पर आपको गाने भेजने होंगे। तो बस अब शुरू हो जाइए, और अब अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप आए बहार आ गई हैं तो अगला गाना इसी बात पर ले चलता हूँ सीधे जाकिर खान जी के पास। और जाकिर खान जी आपको क्या सुनवाने वाले हैं, शायद वो गाना सुनवाने वाले हैं जिसका नाम है महफिल में सितारों के, शायद उन्होंने इसी गाने को भेजा है। तो जाकिर खान जी आपकी पसंद का गाना को मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: लाजवाब सॉन्ग था ये भी। और अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम। और लिखते हैं कि हम भी शामिल हो गए, बहुत बहुत वेलकम है। सरवजीत जी लिखते हैं कि कार्यक्रम का आगाज बहुत शानदार हुआ है। और अजय भगत जी लिखते हैं कि सॉन्ग ये भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। और अर्धवंशिका जी लिखते हैं कि महफिल में सितारों की ये बहुत ही शानदार फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दोस्त जाकिर जी के पसंद ऑसम। एंड नाहिद जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद सुपरहिट लाजवाब। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी चॉइस है, अच्छा लगा सॉन्ग। और संध्या जी आपका वो भी गाना हो गया है रिजेक्ट, आपने जुदाई फिल्म का गाना भेजा है उसमें वो शब्द नहीं आ पा रहे, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए गाना भेजिए, जरूर मैं गाना प्ले करूंगा आपका। मीना जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, मैंने पहली बार इस गाने को सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। रंजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास गाना है, सुनकर मजा आ गया है। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश जाकिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सुपर इतला जो आप पसंद के लिए बहुत शुक्रिया। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद मुझे बेहतरीन लगी है। और बीके पंत जी लिखते हैं कि वाह सुपर फरमाइश समझ जी, मैं फिल्म सितारों की। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अगली पसंद के लिए मैं सीधे चलता हूँ सरायकेला झारखंड, राधा कृष्ण गोप जी के पास।
1: मैं राधा कृष्ण गोप सरायकेला झारखंड से रेडियो हॉट स्टार शुरू की बादशाह आरजे अमन खान जी।
0: जी जी,
1: आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार,
1: कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी मस्त और चकाचक में।
0: अच्छा
1: अमन जी,
0: जी,
1: आज मैं स्टार थीम ऑफ चॉइस में एक गाने लेकर आया हूँ। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर।
0: अच्छा,
1: सिंगर हैं कुमार शानू, गाने के बोल हैं, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। इस गाने में अमन जी,
0: जी, जी
1: पहले आपको
0: थैंक यू सो मच,
1: आपकी सुंदरता की मूर्त
0: है, थैंक यू सो मच।
1: और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दीवानों और दीवानियों को डेडिकेट है।
0: ओके जी, धन्यवाद है राधा कृष्ण गोप जी। और इसी गाने में है बाबूलाल अंजाना जी भी, तो आप दोनों दोस्तों की पसंद पे सुनवाता हूँ आपकी पसंद का ये गाना, गा रहा हूँ इस महफिल में, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और क्या फीडबैक है शामिल करते हैं। पहला ये,
1: थैंक यू सो मच सर गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया।

0: अभिजीत सिंह, वाव क्या बात है, हार्ट टचिंग सॉन्ग, ऑसम फरमाइश, थैंक यू सो मच। एंड राधा कृष्ण गोप देखते हैं, अमन जी मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, रंजीत कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना चल रहा है अमन सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की पसंद बहुत ही शानदार पसंद है, अच्छा लगा मुझे। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है,
0: अच्छा,
1: आज हूँ मैं जो कुछ भी हूँ आपकी इनायत है, आपकी इनायत है।
2: लाजवाब भी तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। मैं सरोजी सेठी फाजिल का पंजाब से,
0: धन्यवाद है आपका भी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी दिल से धन्यवाद है मेरा गाना प्ले करने के लिए। और साथ ही साथ अजय भागा जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत इमोशनल यानी के कर दिया, मजा आ गया इस गाने को सुनकर, जिनकी भी फरमाइश से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और कुंता जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी बाबूलाल अंजना जी की पसंद शानदार लगी है, दोनों को धन्यवाद देते हैं। समुंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है समुंदर सिंह जी। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूं अमन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, कार्यक्रम शानदार चल रहा है। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अगली पसंद के लिए मैं लिए चलता हूं आपको सीतामढ़ी बिहार, और वहां से है काजल झक्का जी, लिखते हैं कि नमस्ते गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, नमस्ते गुड इवनिंग, मैं काजल आज गाना सुनना चाहती हूँ। और गाना सबसे पहले आपको और मेरे मिठू मियाजू के स्पेशली डेडिकेट है, और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट है, सुनवा दिया।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। तो ज्योति जी लिखते हैं लाजवाब सॉन्ग काजल झक्का जी। अशोक देशमुख जी लिखते हैं काजल झक्का जी के पसंद एकदम झक्कास लगी है, धन्यवाद देते हैं काजल जी, गाने में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद है आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सीतामढ़ी बिहार से काजल झक्का जी के पसंद लाजवाब बेहतरीन। एंड मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ वाओ क्या बात है बेमिसाल सॉन्ग के लिए, थैंक यू काजल। एंड मोहन नवाल जी लिखते हैं कि शुक्रिया करते हैं अमन सर जी इतना प्यारा गाने के लिए काजल झक्का जी का। नाही जी लिखते हैं कि वेरी नाइस फरमाइश है काजल जी आपकी। और गजानंद जी लिखते हैं कि इन कुंता बेन जी, बाबूलाल अंजाना जी, राधा कृष्ण गोपी और काजल झक्का जी के पसंद बेहतरीन लगी है, मजा आ गया सुन के। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है काजल जी आपका। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि काजल जी के पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि मेरी फेवरेट सॉन्ग है। और यहाँ पे यानी कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू काजल जी। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि काजल जी मुझे भूल गई है। हाँ भूल जा, आजकल सबको भूल गई है काजल जी, बिल्कुल हमें भी भूल जाती है कभी कभी, हमें भी डेडिकेट नहीं करती है। ओके, और अगला गाना मैं जरूर प्ले करूंगा। और ये गाना तो लिए चलता हूँ आपको महाराष्ट्र, और वहाँ पे है हमारे गजानंद जी का ग्रुप और फुलबाग तो संजू भाव भी हैं, और एक साहब और भी हैं ये बांका बिहार वाले, हमारे नाम है सुनील कुमार जी, वो भी इनके गाने में शामिल हो रहे हैं आज। तो सभी दोस्तों की पसंद पे मैं सुनवाने वाला हूँ ये गाना, इंजॉय कीजिए।
1: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी,
0: जी
1: आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
1: अमन सर जी,
0: जी।
1: कैसन बानी?
0: बहुत बढ़िया, बताइए कैसन बानी?
1: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी,
0: जी, जी।
1: मैं फुले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे ग्रुप के अध्यक्ष आदरणीय गजानंद सालोकर जी, इनके सुपुत्र इनके राजकुमार चिरंजीव आदित्य सालोकर जी, इनका आज जन्म दिवस है। तो सर उनको उनके जन्म दिवस पर हमारे पूरे फुले परिवार की ओर से और रेडियो टस्टार परिवार की ओर से उनके जन्म दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। आने वाला हर दिन उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, यही हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनके झोली में इतनी खुशियाँ पड़े, इतनी खुशियाँ पड़े कि उनकी झोली कम पड़ जाए। अमन सर जी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आदित्य राज जी। और अमन सर जी,
0: जी, जी।
1: आज है गुरुवार और आज की अपनी थीम है स्टार थीम चॉइस।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के कार्यक्रम में आशिक, बेवफा, महफिल, परदेसी, बेखुदी, नशा, बेघर, खुशी, जुदाई और तन्हाई, ये प्यारे प्यारे शीर्षक दिए गए सर। तो हमने भी आशिक इस शीर्षक पर एक गीत चुना है सर।
0: ओके।
1: फिल्म का नाम है आशिक आवारा और इसी फिल्म का एक गीत है सर, जिसे आवाजें दे उदित नारायण जी इन्होंने, और गीत के बोल सर इस प्रकार है।

0: लकी नंबर ओए तू है मेरा लकी नंबर, तेरा नंबर है 12। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। अच्छा। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। अमन सर जी,
1: जी
0: आप एक गीत सुना दीजिए।
1: okay.
0: और डेडिकेशन में याद करूंगा सर, सबसे पहले आपको वेलकम अमन सर जी, बाद में आपके सुंदरता की मूरत सर, क्योंकि यह गीत आप गा रहे हैं आपकी सुंदरता की मूरत के लिए, तो यह गीत मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा सर।
1: धन्यवाद
0: सर उनके लिए भी। बाद में चुलबुली आवाज की मलिका, मेरी छोटी और प्यारी बहन आरजे वंशिका, आरजे परमार जी और रेडियो ऑटो स्टार सुन रहा मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो ऑटो स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी और आरजे वंशिका जी के साथ मैं फुले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
1: ओके जी, तो आप सभी के पसंद पे सुनवा रहा हूँ ये गाना, गजानंद जी का ग्रुप और सुनील कुमार बांका बिहार और

और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी दोस्त अभी नए नए जुड़ रहे हैं और मुझे व्हाट्सअप करते हैं, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप बिल्कुल ना करें, क्योंकि व्हाट्सअप से मैं मतलब नहीं लेता हूं ना कोई भी फरमाइश वगैरह। अगर आपको फरमाइश भेजनी है तो रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वो आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, रेडियो हॉटस्टार उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से मिलेगा आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट। सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा, जैसे ही आप रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, सबसे नीचे मिलेगा आपको मोर दाहिने साइड में, वहां पे मोर पर क्लिक कीजिएगा और वहां पे मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट। सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से अपना नाम जरूर लिखें, गाने का बोल जरूर लिखें और जो भी मैसेज उसके नीचे लिखना हो लिखकर भेज सकते हैं, मेरा पास आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट आ जाएगा, मैं गाने आपके जरूर शामिल करूंगा, नो टेंशन। लेकिन आज का थीम पे होनी चाहिए और आज का थीम है, एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, आज का थीम है, जो शब्द है वो है आशिक बेवफा, महफिल परदेसी, बेखुदी, नशा, बहार खुशी, जुदाई और तन्हाई। इन शब्दों पर ही आपको गाने भेजने होंगे और अगर इन पर नहीं होंगे तो गाने शामिल नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद और फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड दोस्त गजानन सरकार जी, फुलबाग संजीव भाव जी और सुनील जी और जितने भी दोस्त ग्रुप में शामिल हैं, सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाने में शामिल करने के लिए और इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए, धन्यवाद देते हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि ग्रुप फरमाइश बहुत ही शानदार लगी है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। साथ ही साथ यानी कि किशन पाल जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग लगा है अमन सर जी। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि संजीव भाव जी, सुनील जी, गजानन जी के पूरा ग्रुप को धन्यवाद देते हैं बेहतरीन फरमाइश के लिए। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, ब्यूटीफुल फरमाइश। एंड जाकिर खान जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश बेहतरीन लगी है, सुपर हिट लगी है, मजा आ गया सुनके, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। साथ ही साथ यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों के फरमाइश को प्ले करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या कहते हैं बीके पंत जी लिखते हैं कि अमन सर जी सुपर सॉन्ग सुपर फरमाइश है, मैं हूँ आशिक आवारा, ये गुरु की फरमाइश शानदार लगी है। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि गजानन जी के गुरु की फरमाइश सुपर हिट लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश झक्कास। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि संजीव भाव जी एंड सुनील कुमार जी गजानन जी के ग्रुप की फरमाइश बहुत ही लाजवाब लगा है, सभी को धन्यवाद। बाबूलाल अंजना जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानन सुलगार जी के ग्रुप की फरमाइश बहुत ही शानदार लगी है। रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाने की फरमाइश, ग्रुप फरमाइश, सभी को थैंक यू। मिशालंगा जी लिखते हैं कि शानदार गीत चल रहा है। और गोविंदा खंडारे जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है आपका भी। सुरेश विजय पांडे जी लिखते हैं कि अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों का गाना प्ले करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके जी, तो इसी बात पर अगला गाना जो है वो है जब से हम तेरे आशिक बने, आशिकी का मजा आ गया, सुनवाना चाहते हैं बीके पंत जी। बीके पंत जी आपका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए जब से हम तेरे आशिक बने। सच में आशिकी का मजा आ गया है।

0: जा गया। वेलकम बैक।
1: जब से हम तेरे आशिक बने, सच में आशिकी का मजा आ गया। और बहुत सारे फीडबैक भी आ गया है। और सबसे पहले तो आरजे वंशिका जी लिखते हैं, बीके पंजी, आपकी आपकी बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच। एंड उनके बाद ज्योति जी लिखते हैं, भाई साहब की पसंद, ब्यूटीफुल। एंड उनके बाद ये सर्वज

0: के सपुत्र आदित्य सोलंकर जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट चार्ज जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: धन्यवाद जी आपका भी। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि वाओ शानदार पसंद फिल्म क्रांति वीर का, जब से हम तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे सुरेश भिसे पाटिल जी लिखते हैं कि जब से हम तेरे आशिक बने लाजवाब फरमाइश मेरे दोस्त का। और देवराज कुमार जी जुड़ चुके हैं रेशम नगर भगैया से, बहुत बहुत वेलकम है। और उनके बाद से नाहिद जी लिखते हैं कि वाओ वंडरफुल फरमाइश है। बीके पंजी थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: हेलो अमन सर
1: जी,
2: मैं मिसाल अंगद और अभी हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी का ग्रुप का गाना आपने सुनवाया आशिक आवारा फिल्म का। उनके गाने में

0: या तो मैं गजानन सालोकर जी का दिल से धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी आपने तो बहुत खूबसूरत गाना सभी को सुनवाया, तो मैं आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और अभी जो गाना चल रहा है ये गाना भी बहुत बढ़िया है, जिस भाई साहब की पसंद है तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। धन्यवाद
1: आपका भी। और उनके बाद से प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बीके पांजी की पसंद बेहतरीन लगी है मुझे। और अकुंता बनर्जी लिखते हैं कि बीके पांजी की फरमाइश ब्यूटीफुल। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि जब से हम तेरे आशिक हुए बेहतरीन लाजवाब पसंद सुनकर मजा आ गया। सच में बीके पांजी लिखते हैं सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा गाना प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा फीडबैक देने के लिए। किशन पाल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग और मेरा पूरा परिवार सुन रहे हो, थैंक यू सो मच, सभी का वेलकम करता हूं मैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि बीके पंत जी की पसंद शानदार शानदार शानदार। ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं रवि मौड़े जी।
2: जब से हम तेरे आशिक बने आशिकी का मजा आ गया, जब से

0: जब से हम तेरे आशिक बने। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया।
1: ओके okay, और इसी बात पे अगला जो गाना
0: सभी
1: मैं,
0: गाने एक से बढ़कर एक चल रहा है, मैं सुन रहा था लेकिन जुड़ा अभी अभी हूँ सर जी।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो दो दोस्तों की पसंद है, सर्वजीत सेठी जी और साथ ही साथ हुकुम चंद जांगड़ जी, दोनों की पसंद एक ही है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए, इंजॉय कीजिए गाना।

0: वेलकम बैक, बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, ज्योति जी लेते के दोनों दोनों दोस्तों की पसंद, ओल्ड इज गोल्ड, सुपर लाजवाब लाजवाब लाजवाब। एंड उसके बाद है आर्य वंशिका जी लिखते हैं कि बेखुदी में सनम, ओ ये तो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच जी। एंड यहाँ पे लिखते हैं किशन पाठक जी का सुपर सॉन्ग सुपर सॉन्ग सुपर सॉन्ग लग रहा है मुझे ये। साथ ही साथ बीके पंची लिखते हैं सर जी बेहतरीन फरमाइश है, बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम, ओल्ड इज गोल्ड, सुपर फरमाइश है। और नाही जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी फरमाइश है, बेखुदी में सनम जी बिल्कुल। और एमडी फैजी वाह क्या गाना है, क्या प्यारा गाना है, एकदम मजा आ गया सुन के। और आदरणीय प्रशांत अमरुका सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका। और कुंता बिनी जी लिखते हैं सर्वेश भगत जी, एंड नहीं सर्वेश भगत जी नहीं थे, दो दोस्त थे, नाम है उनका यानी के सर्वजीत सेठी जी और हुकुमचंद जी, दोनों की पसंद बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और इनके बाद जाकिर खान जी लिखते हैं दोनों दोस्तों की पसंद लाजवाब, ये मेरा पसंद का गाना है, मेरा फेवरेट गाना है ओल्ड इज गोल्ड, धन्यवाद देते हैं दोनों दोस्तों को। और राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार पसंद। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाओ क्या सॉन्ग है, मजा आ गया सुन के, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन के। और रवि महाराज जी लिखते हैं कि बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम, वाह क्या बात है अमन सर जी, मोहम्मद रफी साहब की और लता मंगेशकर की आवाज में इस गाने की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है, सच में ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। और अमीना खान जी लिखते हैं वाओ वंडरफुल सॉन्ग है और नाइस पसंद है, थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों के लिए। मोहन निवारी जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही शानदार गाना है बेखुदी में सनम, मजा आ गया सुन के। बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद को धन्यवाद देते हैं। एंड सुनील कुमार जी लिखते हैं अमन जी बेखुदी में सनम आ गए आपके पास हम भी, अच्छा हम भी आ गए, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और शॉर्ट आउट में मेरे पास कुछ दोस्तों का मैसेज है यहाँ पे, सुनील कुमार जी नहीं इनका तो नहीं, इनको तो डिलीट करो। बाबूलाल अंजाना जी लिखते हैं हमारे दोस्त गजानंद सरकार जी का सुपुत्र का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हो। ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि आदित्य जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार के श्रोता गजानंद सुरकार जी के सुपुत्र आदित्य सुरकार जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी ने मैसेज किया। रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। और प्रशांत अम्बुलकर जी लिखते हैं बेखुदी में सनम ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: हेलो अमन सर जी, फिर एक बार मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया बेखुदी में सनम, अमन सर जी ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और ये गाना आपके रेडियो हॉटस्टार के माध्यम से सुनने को मिला तो ये मुझे और भी खुशी हुई। अमन सर जी आज का कार्यक्रम और आज की थीम बहुत शानदार है, और आज हम पूरे गाने सुनेंगे और कार्यक्रम का मज़ा आखिर तक लेंगे, धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद। इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, नाहिद अंसारी जी की पसंद है और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए नाहिद जी।

0: बिल्कुल अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। वैसे फीडबैक भी बहुत सारा आ ही चुका है मेरे पास। सबसे पहले तो ज्योति जी लिखती हैं कि नाही जी के पसंद सुपर लाजवाब, बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। और साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं नाही जी के पसंद बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, धन्यवाद देते हैं उनको गाने में शामिल करने के लिए। नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए। और बी के पंत जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश है, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, थैंक यू। और नाही जी और बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाही जी के पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू नाही जी। अनप्रमोद कुमार लिखते हैं कि नाही जी के पसंद ऑसम लगा है। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है नाही जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड ये फीडबैक,
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने हमारा गीत चलाया और जिन्होंने हमारे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट स्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरोजीत सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद जी आपका भी। और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद के लिए, थैंक यू नाही जी। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे पूजा भास्कर जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और लिखते हैं कि नाही जी के पसंद बहुत ही लाजवाब। और देवराज कुमार जी लिखते हैं मस्त गाने की फरमाइश, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ये तो मेरा फेवरेट गाना है, धन्यवाद देते हैं, मजा आ गया गाना सुनकर। मोहन वाले लिखते हैं कि ढूंढेगा तो मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा गाना लगा है। जाकिर खान लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है नाही जी, ऑल टाइम सुपर हिट पसंद है। और किशन पाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी थीम क्या है एक बार फिर से बता दीजिए, मैंने तो 2-3 बार बताया है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आज का थीम जो शब्द है उन शब्दों को मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, ओके। और तो आज के थीम के शब्द हैं आशिक, बेवफा, महफिल और परदेसी, ठीक है। उसके बाद है बेखुदी, नशा, बहार, खुशी, जुदाई और तन्हाई, इन्हीं शब्दों पर कोई भी गाने होने चाहिए, इनके अलावा अगर कोई गाना भेजते हैं तो वो शामिल नहीं हो पाता है। और दूसरी बात कि आप लोग जो लोग यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे होंगे उनका मैसेज तो मैं देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, और व्हाट्सएप तो समझ लीजिए कि मेरा AI जवाब देता होगा आपको, तो समझिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मेरा AI जवाब देता होगा, तो AI से बातें कर रहे होंगे आप बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज व्हाट्सएप न करें, रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से ही मुझे मैसेज करेंगे, तभी हो सकता है कि मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, आपका नाम ले पाऊंगा, ओके। और राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, इस गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नाही जी को। और MD फैज जी लिखते हैं कि वाह ये भी गाना बहुत ही सुपर बेस्ट था, थैंक यू सो मच नाही जी, धन्यवाद देते हैं। और नाही जी लिखते हैं सभी दोस्तों को धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, गाने को पसंद करने के लिए। इसी बात पर अगला जो गाना है वो भी बहुत ही प्यारा है, और उस गाने के लिए ढूंढेगा तो मिल जाएगा, और इसे लेके आए हुए हमारे सरफराज जी साउथ अफ्रीका से, और ये गाना सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए सबके चेहरों में।

वेलकम बैक। बहुत सारे फीडबैक आए हुए मेरे पास और ना ही चीज लिखेंगे। थैंक यू सो मच सरफराज जी, वंडरफुल फरमाइश के लिए, आपके लिए बहुत ही प्यारा है। और बीके पंजी लिखेंगे, सर जी सबके चेहरे में आप लगे बिल्कुल। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं, वाओ क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, सरफराज जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। और कुंता बेनर्जी लिखते हैं, सरफराज जी आपकी पसंद बहुत ही प्यारी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद है। और ज्योति खड़वाड़ी जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और मीना जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी फरमाइश है, बहुत अच्छा लग रहा है इस गाने को भी। रंजीत कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है, अमन सर जी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास अच्छा चलिए दो गाने ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आ रहे हैं। एक यानी के कायनात जी का है, यानी प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू

0: वेलकम बैक। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है कायनात जी का, थैंक यू सो मच एंड वेलकम है उनका रेडियो हॉट स्टार में जो दीवाना बना दे। मोहन जी लिखते हैं कि सुपर हिट प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू सो मच मोहन निवारी जी। एंड ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि भाई साहब की, भाई साहब नहीं है ये बहन जी है यानी कायनात जी है, बहुत बहुत वेलकम है उनका। और सरफराज जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और प्रशांत अमुलकर जी लिखते हैं कि ये प्रेमी आशिक बहुत ही बढ़िया गाना लगा है, थैंक यू सो मच। एंड राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद के लिए, थैंक यू सो मच। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश और बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है कायनात जी, थैंक यू सो मच। एंड बीकेप पंच जी लिखते हैं कि सर जी लाजवाब पसंद है प्रेमी आशिक आवारा और बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं कायनात जी को। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि पागल मजनू बहुत ही लाजवाब गाना है। और राजमल हिब्राले जी लिखते हैं कि आर्जमन जी मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है आपका भी, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे किशन पाल जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग लग रहा है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी, अमन सर जी अभी जो गीत चल रहा है सर प्रेमी आशिक आवारा, यह गीत हमें सीधे हमारे कॉलेज के जमाने में ले गया सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। पर सर मैं पसंद करता भाई का नाम नहीं सुन पाया, और उनके पहले आपने हमारे मित्र सरफराज पटेल जी इनके फरमाइश चलाई सर, उनके पहले मेरी बहन नाहिद जी इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले सर्वजीत शेट्टी जी और हुकुमचंद जी इन दोनों की आपने मिलीजुली फरमाइश चलाई सर, उनके पहले वीके पंत जी इनके फरमाइश को चलाया सर, उनके पहले आपने हमारे ग्रुप फरमाइश चलाई सर, तो आपको दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, आपने हमारे ग्रुप फरमाइश चलाई और सर हमारे गीत को चार चार लगे साथ में आपने गुनगुनाया। और आपने हमारे ग्रुप फरमाइश के पहले मेरी छोटी और प्यारी बहन काजल झक्कास जी इनकी फरमाइश चलाई सर, उनके पहले आपने राधा कृष्ण गोप जी और बाबूलाल अंजाना जी इन दोनों दोस्तों की मिलीजुल फरमाइश चलाई सर, उनके पहले मेरे मित्र जाकिर खान जी इनकी फरमाइश चलाई सर, और उनके पहले मेरी दीदी कुंता बेनी जी इनकी अपने फरमाइश चलाई सर, और आज के कार्यक्रम का आपका ओपनिंग गीत। अमन सर जी अब तक चले सभी फरमाइश में सभी दोस्तों ने सभी गीत सुपर और सुपर सुपर भेजे हैं, और आपने भी उनके गीत को बखूबी चलाया सर, आज का कार्यक्रम स्टार थीम चॉइस एकदम सुपर और सुपर से ऊपर ललन टाफ हो रहा है सर। अच्छा। बोले तो रेडबुल हो रहा है सर। अच्छा। सच में सर मजा आ रहा है आपकी प्रस्तुति काबिले तारीफ, मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, इतना अच्छा आप कार्यक्रम सजाते हो मजा आ जाता है सर, रेडियो स्टार जो दीवाना बना दे आरजे मंजी के साथ, थैंक यू।
0: और यहाँ पे एक फरमाइश मुझे दिख रही है, अच्छा एक फीडबैक पहले है इसको शामिल कर लेता हूँ फिर।
2: प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना दिल जाना प्रेमी। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। और उनके पास से ये क्या कहते हैं, गजानंद जी लिखते हैं कि प्रेमी आशिक आवारा ये गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, थैंक यू सो मच इन कायनात जी को। एक मुझे गाना दिख रहा है यहाँ पे, लिखते हैं सुनील यानी कि टक यानी कि टी ए के लिखे हुए हैं, भाई सुनील टक जी गाना मैं आपका प्रेम यानी कि प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए, आशिक पुकारो दीवाना पुकारो जो भी पुकारो।

वेलकम बैक। सच में आशिक पुकारो, आवारा पुकारो, दीवाना पुकारो, जो पुकारना पुकारो यार, मैं तो हाजिर हूँ ना। ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, लाजवाब पसंद के लिए थैंक यू सो मच। एंड नंदलाल यादव जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और मोहन जी लिखते हैं कि सबको धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा अच्छा गाना सुनवाने के लिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एंड पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि यही बहुत अच्छा गाना लग रहा है, थैंक यू सो मच। और बीके पंत जी लिखते हैं कि आशिक पुकारो आवारा पुकारो शानदार पसंद है। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि आशिक पुकारो वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद, बेहतरीन फरमाइश। और मीना जी लिखते हैं औसम फरमाइश से, बहुत शानदार लगा ये गाना है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं सुपर हिट लाजवाब पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। अगली पसंद सुनाऊंगा मैं आपको एमडी फैज आलम जी का आशिकों बहारों का। जी बिल्कुल, बहारों का आशिक होंगे सुनवाते हैं ना।

0: वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले तो अमीना खान जी लिखते हैं कि आपको आपको क्या कह रहे हैं। अच्छा आरजे अमन जी, हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझे आरजे अमन जी ही कहिए। लाही जी लिखते हैं कि फैज जी के पसंद मुझे बहुत ही शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। और राजमल जी लिखते हैं कि आरजे अमन जी क्या सॉन्ग चल रहा है, क्या सॉन्ग आप ही बताइए क्या सॉन्ग चल रहा है। धन्यवाद देते हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एमडी फैज जी के पसंद बहुत ही लाजवाब लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको भी। ज्योति जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल पसंद है। और कुंता बेनर्जी जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश, लाजवाब। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि एमडी फैज जी का गाना मैं पहली बार सुनी हूँ, मुझे अच्छा लगा। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, लाजवाब पसंद है। और इसी बात पर अगला जो गाना है वो करीब यानी कि पांच दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश, नहीं छह दोस्तों की है। छह दोस्त में है अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, नंदलाल यादव जी, अनिल मेहता जी एंड सुभाष तिवारी जी। छह दोस्तों की पसंद है। तो सुनवाता हूँ आपको पहले एक एक करके। पहले अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है कोयला और गाने का बोल है तन्हाई तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई। ये गीत सबसे पहले मैं आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर। धन्यवाद।
0: धन्यवाद। और सर्वेश भगत जी,
2: आरजे अम्मा सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है कोयला, गाने का बोला है तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई। और देश के अर्थ सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत जंदा जिला वैशाली बिहार से बोला, हमारा परिवार सतीश भगत, अहमद भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, चंद कुमार, मन कुमार, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाजी, आत्माराम पाटिल जी, अनिल मेहता जी, नंदलाल यादव जी, आरजे अमन सर जी, आपकी सुंदरता की मूर्त जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे एम एस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुनत दीजिएगा। जयराम जी,
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद। और ये अनिल मेहता जी,
3: हेलो, गुड इवनिंग आरजे अमन सर। आज के इस प्रोग्राम में मुझे कोयला फिल्म से गाना एक सुनना है। फिल्म कोयला से गाना है तन्हाई तन्हाई दोनों को साथ ले आई।
0: अच्छा,
3: ये गाना सुनना है, डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर को,
0: आरजे
3: वंशिका को, आरजे परमार सर को, आदरणीय सुरेश भगत को, गजानन सालकर को, और साथ साथ ऑनलाइन सुनने वाले सभी दोस्तों को, साथ साथ हमारा एक ग्रुप है, इन ग्रुप के सभी दोस्तों को शामिल रहेगा, डेडिकेट रहेगा। ओके, थैंक यू।
0: तो मैं बता दूं कि इतने सारे दोस्त इसमें शामिल थे, अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, नंदलाल यादव जी, अनिल मेहता जी और सुभाष तिवारी जी, सभी के पसंद पे एक ही गाना है तन्हाई तन्हाई। एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी आ चुका है मेरे पास बहुत सारे। ओ माय गॉड, इतने सारे फीडबैक। चलिए दत्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दत्ता करण जी आपका भी। और साथ ही साथ यहाँ पे कायनात जी लिखते हैं कि आपको सुन के सुकून मिला है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आरजे पंचिका जी लिखते हैं कि अशोक जी, नंदलाल जी और सुभाष जी सभी की पसंद बेहतरीन लगी, सभी को थैंक यू सो मच। और बीके पंच जी लिखते हैं कि सर जी ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, वो मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि छह दोस्तों की पसंद सुपर हिट लगी है। और ज्योति जी लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की पसंद मिली जुली फरमाइश, शानदार शानदार शानदार। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पांडे जी, अनिल मेहता जी, नंदलाल जी, सुभाष तिवारी जी सभी के पसंद, ये कोयला फिल्म का लाजवाब लाजवाब लाजवाब, दिल से सभी के लिए धन्यवाद है। एंड नंदलाल जी लिखते हैं अमन जी धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर, हम सभी दोस्तों की पसंद का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत सभी दोस्तों ने पसंद करके फीडबैक दिए, सभी का धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख,
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, सर्वेश भगत जी सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी,
0: जी जी
2: धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, थैंक यू। हमारा ग्रुप फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, आपको लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका सर्वेश भगत जी। और नाही जी लिखते हैं सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। एंड मीना जी लिखते हैं कि वाओ वाओ क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब पसंद है। एंड यहाँ पे सर्वजीत सैदी जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी के ग्रुप की मिली जुली फरमाइश बहुत अच्छी लगी, सभी को थैंक यू सो मच। एंड फैज जी लिखते हैं कि दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान मेरा गाना प्ले करने के लिए, दिल खुश हो गया आज मेरा। कुंता जी लिखते हैं कि वाह कोयला मूवी का बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनने को मिला है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। अमीना खान जी लिखते हैं वाह क्या पसंद है, अच्छा लगा ये गाना। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि तन्हाई तन्हाई गाना सुनकर मजा आ गया। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि नहीं वो रिक्वेस्ट ऑलरेडी यानी प्ले हो चुका है, दोबारा भेजेंगे तो नहीं प्ले होगा। ये फीडबैक
3: आर जे अमन सर, गुड इवनिंग। अभी जो तन्हाई तन्हाई तन्हाई जो सॉन्ग चल रहा था, चारों दोस्तों की फरमाइश बहुत ही लाजवाब, मुझे इस गाने में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रेम सिंह साहू जी साहब टानी जी से,
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी बात पे अगला जो गाना है वो है गोविंदा खंडादे जी का, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, सच में मेरी जिंदगी है तू।

0: यस, मेरी जिंदगी है तू, जिंदगी है तू, जिंदगी है तू। और ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी है। और रवि मोहन जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी,
0: जी जी,
1: आज हमारे परम मित्र आदरणीय गजानन सालोकार जी के पुत्र आदित्य सालोकार जी का जन्मदिन है। उन्हें मैं जन्मदिन की रेडियो हॉटस्टार के माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गजानन सालोकार जी भी रेडियो हॉटस्टार के मेरे हिसाब से तो वरिष्ठ श्रोता है। मैं भी जुड़ा रहता हूँ, सभी श्रोता वरिष्ठ है, लेकिन हमारे गजानन सालोकार जी विशेष रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा एक गीत गुनगुना देता हूँ।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता,

0: टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आदित्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रवि मोहरे,
1: धन्यवाद आपका भी रवि मोहरे जी। और आपका कॉल आ गया इसीलिए शायद आपने फीडबैक को जल्दी जल्दी में कर दिया, कोई बात नहीं। दत्ता जी लिखते हैं कि गोविंदा खंडाते जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको। बीके पंजी लिखते हैं सर जी बेहतरीन फरमाइश लगी ये, बहुत अच्छा लगा इस गाने को सुनकर। और बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बिट्टू कुमार जी। साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब गोविंदा खंडाते जी की पसंद, बहुत अच्छा लगा है। और मीना जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब फरमाइश, अच्छा लगा सुन के। अमीना खान जी लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल आपका भी गाना प्ले होगा, थोड़ा सा इत्मीनान रखना होगा आपको। और यहाँ पे एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाओ सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग प्ले, थैंक यू सो मच। जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और ये लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत ही शानदार गीत है, बहुत बहुत वेलकम है जितेंद्र जी। और हीरामन खेड़े जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: आज हमारे परम मित्र गजानंद सालोकार जी, इनके लाडले बेटे आदित्य, इनका जन्मदिन है, तो हमारे पूरे खिराड़े परिवार की ओर से इनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तुम जो हजारों साल साल के हो 50,000, धन्यवाद। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
1: बहुत बहुत वेलकम है आपका हीरामन खिराड़े जी, बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये फीडबैक
3: अमन सर जी, कुछ देर पहले आपने हमारे आदरणीय सर्वेज भगत जी, आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, आदरणीय अशोक देशमुख जी, आदरणीय नंदलाल यादव जी और सुभाष तिवारी जी और आत्माराम पाटिल जी, इन छह दोस्तों की आपने मिलजुल फरमाई चलाई सर, उनका गीत सुन के मज़ा आ गया। उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा गीत में याद करने के लिए। और अभी जो गीत चल रहा है हमारे गोविंदा जी, इनका गीत भी सर हमें अच्छा लगा, उनको भी सर मैं शुक्र बोलूँगा। और आज का कार्यक्रम भी आप बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हो, मज़ा आ रहा है सर, थैंक यू सो मच। मैं फुले बख्ता सर जी भाऊ रेडियो ऑटो स्टार जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ, थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद जी आपका गजन सॉरी फुले बख्त संजू भाऊ जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि शानदार पसंद है। कुंता बेनर जी लिखते हैं वाह बहुत ही खूबसूरत है मैसे गोविंदा खंडाते जी, थैंक यू सो मच। और अगला गाना जो है वो आरजे वंशिका जी का, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। और ये गाना ओह क्या कहें, सुनिए इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। ज्योति जी लिखते हैं कि वंशिका जी के पसंद सुपर लाजवाब, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: वाओ, सो लवली, एकदम हार्ट टचिंग गाना। वंशिका जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया है इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए, धन्यवाद।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ MD यानी कि परवेज आलम जी जुड़ चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी परवेज जी। और अमीना खान जी लिखते हैं कि अच्छा, बड़ा हसीन है, वाह क्या बात है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे बीके पंत जी लिखते हैं कि सर जी बेहतरीन फरमाइश है ये, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अकुंता बेनी जी लिखते हैं कि वाह ब्यूटीफुल पसंद है, थैंक यू सो मच आरजे वंशिका जी। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि छोटी बहन आरजे वंशिका जी का वसन बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे MD परवेज जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि वाओ बहुत ही खूबसूरत हॉट टचिंग सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: आरजे अमन सर जी,
0: जी
2: प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करते सभी को धन्यवाद देते हैं। और गजानन सलोकर जी का आज लड़का आदित्य का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, ईश्वर उनको खूब खुश रखे, आबाद रखे, यही प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और हमारा थोड़ा फोड़ा एक निकला हुआ है इसलिए,
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: फीवर थोड़ा थोड़ा लग रहा, फीवर अंदर से लग रहा, बोलने का ज्यादा मन नहीं करता।
0: कोई बात नहीं, आराम कीजिए, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए बस। आप चलिए अगला गाना मोहम्मद यानी के कौशर नियाजी जी का मैं सुनवाता हूँ। मोहम्मद यानी के कौशर नियाजी जी हैं, मोहम्मद कौशर नियाजी जी, ये क्या कहते हैं नियाजी, हाँ ये लिखते हैं कि हेलो आरजे अमन जी, आज आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड मैं हूँ यानी कि मोहम्मद कौशर नियाजी, सुंदर नगरी दिल्ली से। आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ और सबसे पहले आपको और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ओके, तो सुनवा दिया आपकी पसंद का ये गाना सनम बेवफा।

0: और अमीना खान जी लिखते हैं कि मुझ पर अपना इश्क यूं ही बेकरार रहने दो। अच्छा, मुझ पर अपना इश्क यूं ही ये बरकरार रहने दो और बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। वाह क्या बात है, क्या लिखा है आपने, अच्छा लग रहा है। और प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है प्रकाश जी आपका। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश है। साथ ही साथ हमारे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और MD फैज जी
1: ये भी बहुत प्यारा, एकदम हार्ट टचिंग सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया MD फैज आलम मोहिउद्दीन नगर,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और नाही जी लिखते हैं वाओ अमेजिंग पसंद के लिए, थैंक यू सो मच। एंड सर्वजीत जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब गाना। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश है मोहम्मद कौसर न्याजी जी, धन्यवाद देते हैं आपको इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। मीना जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद, बहुत मजा है इस गाने को सुनकर। और गजानंद जी लिखते हैं कि सलाम बेवफा गाना बहुत अच्छा लगा, लता मंगेशकर और विपिन सचदेवा की आवाज में। जी बिल्कुल। रवि मौर्य जी लिखते हैं कि सुपर लाजवाब आरजे वंशिका जी, दिल छूने वाला आपका सॉन्ग था, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। और अभी वाला गाना कि तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा सनम बेवफा, ये भी अच्छा लगा। जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है। और किशन पाशा के लिखते हैं कि बेहतरीन गाना है सनम बेवफा। अगला पसंद जो है वो यानी कि मिस्टर नाम है परवेज अहमद जी, मोहम्मद नहीं यानी कि परवेज आलम जी। तो परवेज आलम जी गाना प्ले कर दिया कि तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, सुनवा दिया।
2: तेरा

0: वेलकम बैक। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। सोहेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा शायरी पढ़ने के लिए जी। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी पसंद है। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि परवेज आलम जी की पसंद बेहतरीन लगी है। और ये फीडबैक
1: तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का

0: होगी। बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, सभी गाने एक से बढ़कर एक चढ़ रहे हैं। जय हो अमन सर जी, मजा आ गया रेडियो हॉटस्टार सुनकर, क्या बात है। इसलिए मैं रोज सारे दुख दर्द थकान भूल के आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत हैप्पी हो जाता हूँ, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है आपका प्रोग्राम सुनने से।
1: थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत
1: बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है। और ये फीडबैक भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं।
2: वाह क्या गाना सुनाए हैं, दिल खुश हो गया एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद एंडी का आलम मौजूदगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाही जी लिखते हैं कि वाह सुपर फरमाइश, और राजमल जी लिखते हैं कि अर्जमन जी सुपर सुपर सुपर सॉन्ग है, और कुंता जी लिखते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग है ये बिल्कुल। और जुड़ चुके हैं, नाम है बलराम जमदार जी, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि क्या सर मेरा गाना नहीं बजेगा। अरे कैसे नहीं बजेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि नहीं वो गाना थीम पे होना चाहिए। वो सुनिए दिल जानिए, क्या ये थीम पे है? मुझे तो नहीं लग रहा ये थीम पे होना चाहिए। अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ मीना इब्राहिम जी की, ये गाना उनका है बातों को तेरी हम भुला ना सके, सुनवा दी, एंजॉय कीजिए।

0: और दत्ता जी लिखते हैं कि लगता है कि आज मेरा नहीं, आज आपका गाना नहीं आएगा शायद, हमको भी लग रहा है, क्योंकि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि लवली फरमाइश है मीना इब्राहिम जी की, धन्यवाद देते हैं। और राजमल जी लिखते हैं कि अमन सर जी नमस्कार, बहुत ही सुपर सॉन्ग चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। नाही जी लिखते हैं वाओ मीना जी क्या बात है, काफी बेहतरीन पसंद है आपकी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, ओके। और मीना जी लिखते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदा बिनी जी लिखते हैं कि सुपर फरमाइश लाजवाब, थैंक यू सो मच मीना इब्राहिम जी। और बीके पंच जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही लाजवाब गाना है, थैंक यू सो मच। ओके जी, अगली पसंद मैं सुनवा रहा हूँ, और जिसे लिया है रंजीत कुमार जी ने, रंजीत जी।
1: आरजे अमन सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग।
1: आज थीम चॉइस शो में आज एक गाने की फरमाइश है, एल्बम का नाम है दिल के टुकड़े हजार हुए, और गाने का बोल है।

0: माना। ये गीत सबसे पहले आपको डेडिकेट है और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट है और वंशिका जी को भी डेडिकेट है और जितने भी रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले साथी हैं सभी को डेडिकेट है। मैं रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से यही गीत सर जी सुना दीजिए।
1: वफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम।

वेलकम बैक, फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। एमडी फजी जी बिल्कुल खूबसूरत नगमा है, धन्यवाद देते हैं रंजीत जी को। और प्रमोद कुमार लिखते हैं रंजीत जी की पसंद सुपर सुपर सुपर लगा है। और ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद ब्यूटीफुल। और नाहिद जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, क्या फरमाइश है रंजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर लाजवाब सॉन्ग के लिए। राजमल जी लिखते हैं कि आरजमन जी लाजवाब सॉन्ग चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं सुपर हिट पसंद। और अमीना खान जी लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम का नाम बेवफा से वफा तक, वाह। जी जी बिल्कुल, आप तो नाम देने में माहिर हो। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है और थैंक यू रंजीत जी। और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार फरमाइश है जी। इसी बात पर अगला जो गाना है वो भगत जी का मैं गाना प्ले करता हूँ, अजय भगत जी का। लिखते हैं कि मैं बेवफा नहीं हूँ, ये गाना सुनना चाहता हूँ। अजय भगत हूँ मैं और मैं हूँ यानी कि किशनगंज बिहार से। और डेडिकेट है आरजे अमन जी, आरजे अमन जी का जित सर्वेज भगत जी और जितने और नाहिद अंसारी जी और जितने भी दोस्त हैं और यानी पूजा जी और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी दोस्तों के लिए मेरा गाना डेडिकेट है। तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए, मैं बेवफा नहीं हूँ।

0: बिल्कुल मैं बेवफा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास। अनिल मेहता जी लेते हम भी जुड़ गए हैं। जी जी, बहुत बहुत वेलकम है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते जी। और यहाँ पे ये फीडबैक,
1: आज तो भाईजान आपके दिल पर बिजली गिर रही है। बेवफाई वाला गाना दिल को सुकून दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और दत्ता करण जी लिखते हैं कि जी तो देखिए आप ना, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग जो गाना भेजते हैं वो एकदम अंत समय में भेजते हैं, और उससे उससे मतलब पहले भी फरमाइश आ जाती है। और ये जरूरी नहीं कि हर किसी की फरमाइश आ जाए तो उसको उसको शामिल ही हो पाएगा, क्योंकि कभी कभी फरमाइशें शामिल नहीं भी हो पाती हैं, क्योंकि फरमाइशों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और सभी की फरमाइश को शामिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि नहीं। और ना ही जी लिखते हैं कि सो हार्ट टचिंग सॉन्ग है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड रंजीत कुमार लिखते हैं कि सर जी गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किशन पाल जी लिखते हैं लाजवाब गाने के लिए, अमन जी धन्यवाद देते हैं दोस्त को। जाकिर खान जी लिखते हैं बेवफा वाला गाना सभी शानदार चल रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड ज्योति जी लिखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पसंद है। और उनके बाद मीना जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, बहुत ही प्यारी पसंद है। साथ ही साथ प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अजय भगत जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और उनके पास राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। मोहन वाले जी लिखते हैं कि सुपर पसंद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रविंदर गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और अमीना खान जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग। और जितेंद्र जी लिखते हैं सुपर फरमाइश है ये इस गाने के लिए। कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है और सही समय पे हैं अशोक पाल जी, क्योंकि इनका अगला गाना इन्हीं का प्ले होने वाला है। अशोक पाल जी तो मैं आपका गाना प्ले कर रहा हूँ, आप आ गए हैं बिल्कुल टाइम पर। तो यानी कि प्यारे मैंने की बेवफा गोरी हम सुनवा दिया।

गोरा फुरी जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही शानदार गाना है, और साथ ही साथ मीना जी लिखते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या गाना चल रहा है एकदम। मोहन जी लिखते हैं कि अशोक पाल जी आपकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। नाही जी लिखते हैं ओहो क्या बात है, सुपर सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया अशोक पाल जी। अशोक पाल जी लेते हैं थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। जितेंद्र जी लेते हैं वाह क्या पसंद है बेहतरीन गीत। इसी बात पर अगला जो गाना है वो पूजा भास्कर जी का सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए पूजा भास्कर जी।

वेलकम बैक। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी देखते हैं भोजपुरी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया एकदम सुन के। और साथ ही साथ रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि मस्त भोजपुरी गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया। राजमल जी लिखते हैं कि आर्यमन जी आपकी आवाज लाजवाब है, थैंक यू सो मच। नाहिद जी लिखते हैं कि सो लवली हार्ट टचिंग सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और गर्जन ये गजन सुनकर जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी की पसंद बेहतरीन लगी है। MD5 जी लिखते हैं वाओ नाइस पसंद है। अगली पसंद मैं सुनाता हूँ, नाम है शिखा आनंद यानी शिखा मिश्रा जी, सलाम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जा, इंजॉय कीजिए।

0: शीशा
1: चूर हो जाए,
0: चूर हो जाए।
1: वेलकम बैक, और फीडबैक भी आ गया है मेरे पास बहुत सारा, और बहुत सारा मतलब मीना जी लिखते हैं वाह वाह बहुत खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जागृत जी लिखते हैं मोहब्बत ने आज हमको रुला दिया, लिखते हैं कि मोहब्बत ने आज हमको रुला दिया, जिस पे मरते रहे उसी ने भुला दिया, हम तो उसकी यादों में आंसू पीते गए, हम तो उसकी यादों में आंसू पीते गए, एक दिन उसने आंसू में भी जहर मिला दिया। ओ माय गॉड, ऐसा हुआ क्या सच में? और कुंता जी लिखते हैं कि वाह अशोक जी और पूजा जी सभी की फरमाइश बेहतरीन लगी है। और यहाँ पे नाही जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत फरमाइश। साथ ही साथ एमडी सुहेल जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर नाइस सॉन्ग है। और ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है। और मोहन एवं लिखते हैं कि वाह क्या बात है, सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। एमडी फाइव जी लिखते हैं जी बिल्कुल दिल से शुक्रिया इस गाने के लिए। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि शानदार फरमाइश, मजा आ गया सुन के। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि ये शिखा मिश्रा जी के पसंद, सलाम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, मजा आ गया खिलौना फिल्म का गाना सुनकर। हेमलाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे एमडी परवेज जी लिखते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल अच्छा लगा है। और पूजा भास्कर लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, अगली पसंद में सुनवाता हूँ सुनीता गोप जी की। और सुनीता गोप जी सुनवा दी आपकी पसंद का ये गाना, एंजॉय कीजिए।

और इसी बात पर अगला गाना मैं सुना रहा हूँ बिना फीडबैक को, थोड़ा का मतलब फीडबैक में शामिल करूंगा थोड़ा देर के बाद, एक गाना के बाद मैं शामिल करूंगा। और ये गाना क्योंकि यहाँ पे प्ले होना यानी कि समझिए कि लाजमी है, क्योंकि ये गाना है हमारे बलराम, क्या नाम है इनका, एक मिनट, यानी बलराम जमादार जी का। तो बलराम जमादार जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ घर की इज्जत का, बेवफा बेवफा बेवफा हो तुम, सुनवा दिया।

0: वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं, शामिल कर ही लेता हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले बिट्टू कुमार लिखते हैं, वाह क्या बात है मनसा जी, क्या गाना चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है सुन के। और हेमलाल निषाद जी लिखते हैं कि नए सॉन्ग अमन सा जी लग रहा है और ये बड़ी बेवफा है हुस्न वाली, तो बहुत अच्छा लगा गाना सुन के। जी हेमलाल जी, अब आपने सही सही मैसेज किया है, धन्यवाद ये फीडबैक।
1: वाह क्या गाना है, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाली। अमन जी दिल चल रहा है,
0: अच्छा
1: आज लगता है नींद नहीं आएगा रात में। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम मजुद्दीन नगर।
0: लेकिन मैं 10 बजे तक ही हूँ क्योंकि बहुत से दोस्तों के गाने ऐसे भी छूटने वाले हैं। मोहन वाली जी लिखते हैं कि बेवफा हो तुम, वाह क्या गाना है, मजा आएगा सुन के। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं, हमारी श्रीमती जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। कुंता जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश है। यहाँ पे सुनीता गोप जी, थैंक यू सो मच आपका। और ये फीडबैक सुन लेते हैं शिखा जी का।

0: मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा।
1: वाह सच में ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी फरमाइश पूरी कर दिए। मोगैम्बो खुश हुआ, इंतजार में लगे थे तब से, गाना सुन रहे थे, काम कर रहे थे, बट सात समुंदर पार करके फीडबैक देना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमारा गनवा बजा दिए तो फीडबैक तो देना बनता है।
2: अच्छा, अच्छा।
1: इतना तो सीखा मिश्रा बेरहम दिल नहीं है। बाकी सारे गाने कितने मस्त चल रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओके जी, और यहाँ पे अगला जो फीडबैक है क्या है जरा सा देख लेता हूँ मैं। अमीना खान जी लिखते हैं कि आज तो हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक किया है प्रोग्राम ने, सभी गाने सुपर हिट लगे हैं। और उसके बाद से ज्योति जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल पसंद है। ओके जी, और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ जितेंद्र जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल गीत है ये, अच्छा लगा ये गीत। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेवफा बेवफा बेवफा हो तुम, लाजवाब गाना भी है। और मीना जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच। एंड नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर औसम फरमाइश, बेवफा हो तुम। एंड गजानन जी लिखते हैं कि हंसी हो जवा हो नशा हो तुम, वह क्या बात है, बेवफा हो तुम। अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, और ये बहुत देर कर दिया आने में भाई, आपकी फरमाइश बहुत पहले पहले हो चुकी है। जाकिर खान लिखते हैं कि हर टचिंग सॉन्ग, इसी बात पे अगला गाना रविंदर जी की, रविंदर गोरखपुरी जी की, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, माना के महफिल जवा है हंसी है, बिल्कुल।

0: कुछ भी, बिल्कुल तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है, गजानंद जी लिखते हैं शिखा मिश्रा जी का मोगाम्बो खुश हुआ, बोलगा फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। और नाही जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच रविंदा जी, मेरा फेवरेट सॉन्ग सुनाया आपने, थैंक यू सो मच। एंड मीना जी लिखते हैं वाह बहुत बेहद खूबसूरत गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। आरजेवंशिका जी लिखते हैं कि आपने मेरा गाना प्ले किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, सुनकर दिल खुश हो गया है। एंड अनिल मेहता जी लिखते हैं कि आज तो सभी गाने एक से बढ़कर एक चले हैं, थैंक यू सो मच आरजे अमन सर जी। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है जी। और विलास निकम जी लिखते हैं कि ये तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यारा गाना है। हेमलाल जी लिखते हैं कि तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यारा गाना है। और ये फिर मैं
1: बेवफा बेवफा बेवफा हो तुम। हेलो दोस्तों, मैं बलराम पूर्णिया बिहार से, आज फर्स्ट टाइम मैं रेडियो हॉटस्टार के साथ जुड़ा हूँ और आज मेरी फर्स्ट फरमाइश थी। पहले मैं रेडियो रिमझिम रेडियो सावन का होता हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैं रेडियो हॉटस्टार के साथ जुड़ा हूँ।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका,
1: की हुई थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज के बाद मैं रेडियो हॉटस्टार का नियमित होता रहूँगा और
0: धन्यवाद
1: करता रहूँगा।
0: धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद चल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है पीकू राय जी आपका भी। कुंता जी लिखते हैं कि वेरी नाइस पसंद है रविंदर जी आपका। एंड ये फीडबैक
2: तू जो नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारा गाना, यहाँ पर गौरव कुमार और निकू कुमार बैठ के गाना सुना रहे थे हम लोगों को।
0: अच्छा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद MD फैज आलम मोहुद्दीन नगर।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और अनिल मेहता जी लेते हैं सुपर गाने की फरमाइश है ये। और जकरिया अंसारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत मस्त चल रहा है, थैंक यू जकरिया अंसारी जी। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी जी बिल्कुल तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, बात सही है। अमीना खान जी लिखते हैं कि शिखा मिश्रा जी आप यानी कि ऊपर वाले ने बहुत लवली वॉइस दी है आपको, जी बिल्कुल बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आते रहिए, फीडबैक देते रहिए और गाते रहिए, जी बिल्कुल। और आगे अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, वैसे तो आज के सभी गानों में गॉड में क्या ही बोलूँ, मतलब इतने सारे गाने हैं कि मैं किसको प्ले करूँ किसको ना प्ले करूँ। ओके, फिलहाल अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, भाई हमारे एक नए दोस्त हैं उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, यानी मुस्तफ़ा जी ये सऊदी अरब से है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ का निभाओगे, सुनवाते हैं इनके पसंद का गाना।

0: बहुत लंबा गाना है ये।
1: खींचे खींचे हुए रहते हो।
0: अच्छा
1: क्यों? खींचे खींचे हुए रहते हो, ध्यान किसका है जरा बताओ तो, ये इम्तिहान किसका है? हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान
0: किसका है?

वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं, बहुत सारे। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, लाजवाब पसंद है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं, और मैंने गाने को सीधे ऐसा कट किया सीधे अंत में पहुंचा दिया। और यहाँ पे जकरिया अंसारी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, मजा आ गया सुन के इस गाने को। एंड कुंता बेनच लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पीकू राय लिखते हैं कि वाह तुम तो ठहरे परदेसी सुपर सॉन्ग, आग लगा दी इस गाने ने। बिल्कुल नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत खूब लाजवाब फरमाइश, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। और हेमलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है, थैंक यू सो मच। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी वाला गाना अल्ताफ राजा की आवाज में बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू मेरे दोस्त इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। एंड बीटू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है। और विलास निकम जी लिखते हैं कि ये पुराने गाने का बात ही कुछ अलग है, यानी कि पुराने दिन याद आ गए। बिल्कुल। और अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी मजा आ गया आपकी आवाज में इस गाने को सुनकर, ओ थैंक यू सो मच। एंड जुड़ चुके हैं यहाँ पे तरसेम सग्गू जी, बहुत बहुत वेलकम है। अगली पसंद है वो ज्योति खटवाड़ी जी की है, मूवी मदर 98 का वो गाना सुनना चाहती है, और सभी दोस्तों को हमेशा की तरह डेडिकेट करना चाहती है। सुनवा दिया ज्योति जी।

0: बिल्कुल दे जाते हैं और गाना भी, और यहाँ अनिल मेहता लिख लेते हैं। वाह क्या बात है ज्योति जी, बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, मजा आ गया आपका सुनकर। एंड मोहन तिवारी जी लिखते हैं सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही शानदार लगा है। और अर्जुन वंशिका जी लिखते हैं ज्योति जी की पसंद बहुत बेहतरीन। लहित जी लिखते हैं वाह क्या बात है ज्योति जी, दिल जीत लिया आपने इतना प्यारा गाना सुनवाकर। सर्वजीत जी लिखते हैं कि ज्योति जी की पसंद लाजवाब। एंड अजय भगत लिखते हैं ज्योति जी आपकी पसंद बहुत ही खूबसूरत लगी है, थैंक यू सो मच। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना सुनवाने के लिए। एंड प्रमोद जी लिखते हैं कि ज्योति जी की पसंद लाजवाब है। और MD सहेल जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही गाना सुनकर मजा आ गया, सुन के दिल झूम उठा है। विलास निकम जी लिखते हैं कि ज्योति जी की भी पसंद बहुत ही अच्छी लगी है। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। अगला पसंद मैं सुनवाता हूँ मिसाल अंगा जी के, और मिसाल अंगा जी शायद अकेले या कोई और है, देखना पड़ेगा। पहले मिसाल जी का ऑडियो सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर, मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ। और अमन सर जी आपका तो मैं पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज की जो थीम है ये सभी शब्द बहुत बढ़िया है और इस पर अच्छे अच्छे गाने बॉलीवुड में बन गए हैं। तो अमन सर जी आज मुझे परदेसी इस शब्दों को मैं चुनूंगा, और जो 90s की सुपरहिट फिल्म आमिर खान और करिश्मा कपूर की फिल्म है राजा हिंदुस्तानी, इस फिल्म का मैं सबसे पॉपुलर गाना सुनना चाहता हूँ जो परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। अमन सर जी हम भी ऐसे ही कहेंगे कि आप हमें छोड़ के कभी मत जाना और हम रेडियो हॉटस्टार से हमेशा ही जुड़े रहेंगे। तो अमन सर जी ये गाना मुझे सुनने का है, और ये गाना मैं सबसे पहले आपको
0: थैंक यू
1: और आपकी सुंदरता की मूरत इन दोनों के लिए भी मैं डेडिकेट करूँगा। फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेज भगत जी, हीरामन खिराड़े जी, मोहन नेवारे जी, दत्ता कदम जी, आनंद कुलकर्णी जी, अमोल कांबले जी, और आदरणीय बबीता जी, आरजे वंशिका जी, और मेरे सभी रेडियो हॉटस्टार के सभी जो मित्र है, मैं सभी मित्रों को ये गाना मैं डेडिकेट करूँगा। तो अमन सर जी गाना सुनवा दो।
0: ओके धन्यवाद। और इसी गाने में एक साहब और भी है, उनका नाम तो मुझे नहीं आ रहा है याद, लेकिन मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए दोनों।

और बता दूं कि आज के यहाँ पे लीडर बोर्ड में यानी विनर बने हुए हैं हमारे यानी के प्रमोद कुमार जी आज यानी फर्स्ट है, और सेकंड है नाहिद जी, और थर्ड है राधा कृष्ण गोप जी, और फोर्थ में है ज्योति खटवाड़े जी, कुंता बेन जी, बाबूलाल जी, मीना जी, गजानन जी, एमडी फैज जी और अमीना खान जी। तो सभी को थैंक यू सो मच। देखते हैं आज का यानी लकी ड्रॉ में किनका नाम

आज के विनर हो गए हैं फाइनली, यानी प्रमोद कुमार जी, और इनका गाना यानी पहले का भी आया हुआ है, मैंने अभी तक प्ले नहीं किया है, तो मैं उनके मतलब उसी गाने को प्ले कर रहा हूँ। और वो गाना तो समझिए कि सभी दोस्तों का उन्होंने नाम डेडिकेट किया हुआ है, सभी दोस्तों का, जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी दोस्तों का नाम उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। तो उनका गाना प्ले करके फिर मैं फीडबैक शामिल करूंगा सभी दोस्तों के साथ।

0: खुशी हो या कोई गीत गाया, खुशी हो या गम हो कोई गीत।
1: भाई नो कॉल, प्लीज मुझे कॉल मत किया कीजिए।

0: देखिए भाई, अब मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉल मत कीजिए, मैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, और फीडबैक आ चुका है मेरे पास। यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है आपकी, थैंक यू सो मच। और उनके पास है यहाँ पे ये लिखते हैं रवि मोहर जी की, ये परदेसी और तुम टूटा परदेसी सभी गाने बहुत अच्छे लगे हैं, थैंक यू सो मच। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, और मिसालंगा जी की भी की फरमाइश बहुत अच्छी लगी है। नाहिद जी लिखते हैं वाओ वंडरफुल फरमाइश भाई मिसालंगा जी एंड भाई प्रमोद जी, थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों के। ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद सुपर लाजवाब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोहन हमारे जी लिखते हैं कि हमारी मिसालंगा जी और प्रमोद जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों को, देना चाहूंगा मैं। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि बेहतरीन गीत मेरे दोस्त का। और पिकू राय जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक गाने की फरमाइश चल रही है आज, तो मजा ही आ गया सुन के। और राजमल जी लिखते हैं कि आर्यमन जी ये परदेसी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक
1: अमन जी आज का सभी गाना सुपर हिट है।
0: अच्छा,
1: मैं मयंक भगत,
0: बहुत बहुत वेलकम है बाबू मयंक जी। और अमीना खान जी लिखते हैं कि क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप, हाँ बिल्कुल, आज आप यानी कि लीडर बोर्ड में मैसेज किए हैं तो आप आ गई हैं, बिल्कुल आप देख सकती हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त यानी प्रमोद जी के पसंद बेहतरीन लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी लिखते हैं कि प्रमोद जी के पसंद बहुत धन्यवाद, और विनर बनने के लिए भी धन्यवाद देते हैं उनको। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत बहुत लाजवाब पसंद है, मजा के सुन के। और ये फीडबैक,
2: हेलो अमन सर
0: जी,
2: मैं मिसाल अंगद, और आपने मेरा गाना सुनवाया अमन सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिए मेरे गाने के, तो मैं सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अमन सर जी आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, मैंने आखिर तक आपका कार्यक्रम सुना
0: जी,
2: और अभी तक सुन रहा हूँ अमन सर जी, तो आज की शाम शानदार शाम,
0: धन्यवाद धन्यवाद। ओके जी, और नाजिम दिल्ली से ऑसम सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ठीक है, और हाँ इसी गाने में थे वो जो इन मिसालंगा जी का जो गाना था इन परदेसी परदेसी जाना नहीं, और उसी में शामिल थे हमारे नाजिम जी भी, तो आपका भी उसी गाने में मैं वेलकम करता हूँ। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि अमन सर जी जाना नहीं छोड़ के जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि समय हो चुका है। रवि मोहन जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर लाजवाब पसंद है, थैंक यू सो मच। और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, वैसे तो गाने सभी एक से बढ़कर एक, यार मैं क्या करूँ सबके, किसकी किसकी मैं प्ले करूँ, लेकिन फिलहाल यानी कि राजमल हिवराले जी, मोहन नेवाले जी और मंगेश देशमुख जी के पसंद पर ये गाना सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए।

और मुस्तफा जी आपका मैसेज आ गया मेरे पास बिल्कुल अब ऐप से आपका मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। परमन कुमार लिखते हैं कि तीनों दोस्तों की पसंद बहुत लाजवाब लगा है, और मोहन कुमार लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सभी दोस्तों का गाना प्ले करने के लिए। राजमल और अजमल जी लिखते हैं कि अमन जी नमस्कार है, गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एंड कुंता जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही शानदार प्रोग्राम चला आज का भी, और प्रमोद जी की पसंद बहुत शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना है, और आज का आखिरी गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ, अमीना खान जी की पसंद है, अमीना खान जी ये सुनवाना चाहती है ये रात का नशा, तो रात का नशा सुनवा दिया। और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन
0: oh yes September 8.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छ छम छ छम। ए गर्ल हम तुम पे दिल्ली सार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाई गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है। तो
3: देख यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: दो पड़ोसियों से,
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया,
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।